थो रेडियो नेपालका नेपाल भाषा समाचार जीव पेश पाखी निना दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्छ सौ पिखु द गुलाथो चतुर्थी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोथी सामाजिक सञ्जालले बिचा कालबिल जुगुडो प्रधानमन्त्री शाह हिग भारत चेगु स्वतन्त्रता दिवस लसता ब्यादिग भिन्तुना या लिस ब्युसे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भारत स्वप या त तब्यागे त भारत न्याप्ने दुगु व शाह या सरकार या त न्याप्ने ग्वाली या त थपिन लेताको नेता दिल थोन्याने प्रधानमन्त्री शाह सामाजिक सञ्जाल एक्स पाकिए भिन्तुना ब्यादिसे नेपाल भारत या स्वापु ग्वाली कालबिल यागु ज्याक अपो तब्याके फैगु बोलसा पङ्का दिल थोया दोथी भारत या स्वतन्त्रता दिवस लसता परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल थ समकक्षी भारतीय विदेश मन्त्री एस जे शङ्कर या त पिन्तुना हस्ना ब्यादिल हस्ना वेक्ल ओइगु इले नेपाल भारत दुग्यङ्क स्वापु पासा ज्या कालबिल भिना वनिगु पलसा पङ्का दिल सरकार जेएनजी आन्दोलन या सहित छेज नाप खापा जुपिन्त स्वरोजगार उद्यम सञ्चालन या त नेगु लख्तक सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध याकेको व्यवस्था यागुदो अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जा नीति ब्याज अनुदान सम्बन्धी निकोगु संशोधित कार्यविधि 2083 जारी याना थुजोगु व्यवस्था यागु ख आर्थिक कार्यविधि नाप वित्तीय उत्तरदायित्व एन 2076 दफा 65 उपदफा 940 पाखिम ब्युगु अधिकार छेला मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन यागु धागु ख संशोधित कार्यविधि जेएनजी आन्दोलन या सहित छेज नाप खापा जुपी लक्षित स्वरोजगार उद्यम कर्जा पद्धति थप यागु ख थुजागु कर्जा नीति जेएनजी आन्दोलन या सहित छेज वा खापा जुपिन्त नेगो लक्तको कर्जा उपलब्ध याके फैगु व्यवस्था याना तको ख कार्यविधि कथ जेएनजी आन्दोलन या सहित छेज वा खापा जुपी नेपाल सरकार वा चले जुगु कानुन कथ कोचिना तोको निका प्रमाण जुगु जिमा जेएनजी आन्दोलन सहित छेज ध्याबले आन्दोलन सहित जुपी मनुया भात कला क्या मे अबु वा माया त थुकेको थ्वातिका तगुदो सहित छेज नाप खापा जुपिन त सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि नाप पशुपन्छी व्यवसाय घरेलु नाप चिरङ्गो उद्योग सेवा व्यवसाय सूचना प्रविधि लिदर सहाय व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय उत्पादन मूलक उद्योग स्टार्टअप उद्यम नाप नेपाल सरकार इले बिले कोचनातोगु मेमेगु उत्पादन मूलक लिसे लजगा व्यवसाय सञ्चालन या त उपलब्ध या के फै थोलिसे सरकार जेएनजी आन्दोलन पाखे प्रभावित परिवार नाप खापा जुपिन्त स्वरोजगार व उद्यमशीलता पाखे आर्थिक रूपमा सबल झिकेको तातया सहुलियतपूर्ण कर्जा दायरा त ब्याकुगु ख ऊर्जा जलस्रोत नाप सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ युपायत नाला ल्याम ह्याउनेमा धैदिगुदो मर्सी कलेज सामाखुसी मिक गुसा गोगु लस्कुस अभिमुखकरण नाप सांस्कृतिक ज्याजले वेक्ल ल्याम पुस्तातेगु ऊर्जा पाखे समृद्धि देय निर्माण ग्वाली जीगु भलसा पङ्का दिल सूचना प्रविधि पाखे विश्वयात छगुथासे स्वाना याङ्कुगु धयादिसे मन्त्र श्रेष्ठ सूचना प्रविधि उच्चतम प्रयोग याना समृद्ध नेपा निर्माण योगदान बित ल्यामते त इनापियाना दिल शिक्षा नाप्नप मानसिक स्वास्थ्य यात्र विद्यार्थी वाचे के मागुखे बब्या दिल शिक्षा विकास नाप इकाइ सौन या प्रमुख सुरेश जोशी बचाहाको गु इले मर्सी विद्यालय नेपा या शिक्षा केले मिटुगु भूमिका त तसङ्क चोसना दिल कलेज सञ्चालक समिति नायालिसे पूर्व सांसद प्रकाश चन्द्र दवाडी निदया इतिहास जुनाचुङ्गु मर्सी कलेज नेपाल या शिक्षा क्षय विकास मध्यक ज्या याना ओयाचुङ्गु नेतना दिल ज्याजुले राष्ट्रिय कलाकार राजु परियार बेलीमाया पुलामी मगरलिसे या सांस्कृतिक प्रस्तुति केङ्कुगु खधासा विद्यार्थी तेत अभिमुखकरण यागु ख रोल्पाया थवाङ गाउँपालिका 5 कोटल बार्या चलखलाना सिपनिगु ल्या चिन्नीम थेङ्गु दु प्युठान या सुरुमा रानी गाउँपालिका 2 ददेरी या राप्ती खुसी रोल्पाया थवाङ गाउँपालिका 5 कोटल बारा या चेद दुम अजम्बर पुन मगर यासिम लुयावगु ख चलखेलाना छम मचा आतक तना चोङ्गुली मालिकु ज्या जुया चोङ्गु प्रहरी धागुदु मदिक वगु वाया हुनी जाजर कोट या फेरी नगरपालिका 2 रिसाङे चलखलाना निम तनाचोङ्गु दु अनया फारुला या ने पेद दुम उमा सिंह खत्री व चिसा पानी या ने द दुम भीम बहादुर कार्की जुगु
जिल्ला प्रहरी ज्याकु जाजोर कोटया सूचना अधिकारी नाप प्रहरी निरीक्षक सुधीर कुमार खड्का थाइदिगु ख नुवाकोटिया टोखा छहरे सडक खण्डे मिगजुगु बस साकेलाना निम मनुत सिगुदु नुवाकोटिया दुप्चेश्वर महादेव दर्शनीय नीति वङ्गु तीर्थयात्री दुगु बस शिवपुरी गाउँपालिका साथ थाना भन्ज्याङ्गे छाका जुया काभ्रे या बनेपा नगरपालिका आठिया ने पेदुम कृष्णमाया प्रजापति डङ्गोल ओ रामेछापिया खाडादेवी गाउँपालिका दुई या खुइन्याद या उदयमाया खत्री सिगु ख दुप्चेश्वर धाम दर्शनीय नीति तीर्थयात्री दुगु थो बस दिका तगु इले थयना मेगु इभी गाडी थक्कर नकिधुङ्का थो झाका जुगु ख सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिलसेना मिग नुवाकोट या थिति थासे वङ्गु चल उकिया लिचो बारे सोयादिगुदु वेक्ल जोखेमे दुगु बस्ती या त महाकथ संरक्षण यासे बस्ती हिकेगु वो सडक तोनिगु लो मत सेवा न्याके त स्थानीय निकाय त उजो नाप ब्यादिल ताई ह्यो निसिं जगधनी पूर्जा मदया पङ्गले लाना चोपी मध्यवर थिमिया

चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिरी रङ्नी दा ढेनमुला गैन्दिरा थिङ लाना नाम ताइबा लिछा भेरी नगरपालिका नि जजर कोट रिसङ रि ढुई निमा मेन्दो सोम भिनी सी बामुला बिचामा मेन्दो नि मा बामुला दुईचे नाङसी घाइते ताबा ओजान नगरपालिका नि सालात हारिला घाँची नि दिङला केदार कार्किला मान लबान लामा मेडिकल कलेज कोहलपुरी शिवा मुबा बिसामा माबा मेन्दो ब्लिरी होजन ग्लाला गाँची ब्ली दिङला उमा सिंह खत्री थेन ब्रेचुई सोम दिङला रती खत्रीला शिवा लिरो सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ला सुङबोन शैलेन्द्र थापा चे सुङबा अनुसार स्याप्पा मुला बिसी सुङबा मुला होजान नगरपालिकालाई माबा चिसो पानीला निश्चुई दिङला भीम बहादुर कार्कीथेन गौरी गाउँला चिब्ली दिङला हरिश बिकदा माइबा गे लबानमुला होजा ढुरी नाङसी डुचुई नि दिङला राम बहादुर साहिथेन ब्लिचुई गा दिङला सिद्ध बहादुर कामी ब्रेचुई गा दिङला कमल कार्कीथेन निचुई सोम दिङला अनिता कार्की चुई दिङला युनिस साइथेन ब्लिचुई घा दिङला सुन्तली चदरा थेन डुचुई घिक दिङला फत्रकला कार्की घाइते ताबामुला चुराङ लासिन रोल्पा जोङला लुङ्री गाउँपालिका गा धेरौ निरी ढुइसे नाङमा मेन्दो घिक खेप्पा मिनी सिबामुला जोङ प्रहरी घेजाङला प्रहरी निरीक्षक कृष्ण श्रेष्ठ से सुङबा अनुसार तिनी छोरी ताइबा ढुइसे नाङसी निश्चुई नि दिङला अम्मी गुरुङ सी बाहिला चुराङ लाचिन लाना नाम ताइबा लिछा निबा ढुइसे नाङमा रुकुम नुप्ला मुसिकोट नगरपालिका गा सोरी नामसारिन सेङबान खाबा कोर्की वर्कसोप नाङबामुला छार बस्ती नोन जोखिम रि ताबामुला तिनी धिनी रि सेरी गाउँरी निभा ढुइसे धन बहादुर विकासे सेङबान खाबा ओक्सोप ढुइसे नाङमा लानन टाङ्गाला छेती ताबामुला लाना नाम ताइबा लिछा हुल नाङला लोलो लोलो ग्लाला सडक घ्यालम कादे फन्द ताबामुला काभ्रे फलाञ्चोक सिन्धुली थुइबा बिपी राजमार्गाला खुरकोट नेपाल थोक कटुन्जे बेसी सडक घ्यालम बहाल ढुइसे जोखिम ताबा बिबान दिनीला न्यासेला ढु ङ्यामा हेन्से सोला स्योला ब्ली ङ्यामा धोना मोकोन मोटर कादे फन्द लाबामुला मकवानपुरला कान्ति लोकपत्री नोन बर्खासे लामा न्यासेला घा घ्यामा हेन्से स्योला घा घ्यामा धोना मोटरका दे भन्द लाबामुला सिन्धु पालचोक्रा अरानी राजमार्गला भोटे कोशी गाउँपालिका ब्ली चार किलो रि ढुई निसी सडक घ्यालम भास्तीमा चु सडक घ्यालम नोन भन्द लाबामुला चुराङ लासिन रसवाला उत्तर गया गाउँपालिका घा खालटेरी सडक घ्यालम भास्तीमा त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडक ग्यालम नोन भन्द ताबामुला सङ्खुवा सबाला बाटखोला गाउँपालिका सोम सिरेक घाङ्री सडक घ्यालम भास्तीमा कोशी राजमार्गला खाँदबारी किमा थाङका सडक घ्यालम रिनोन मोटर कादे ब्राबारी खाम्बा आरे चुराङ लासिन लमजुङला मर्स्याङदी गाउँपालिका ब्ली राम बजारदी ढुई ताइबा लिछा बेसी सहर मनाङ सडक घ्यालम नोन भन्द ताबामुला मुस्ताङला थासाङ गाउँपालिका ब्ली कौकु स्योङरी ढुइसे ढुई निमा बेनी जोमसोम सडक घ्यालम नोन भन्द ताबा मुला बिसी प्रहरी से पाङबा मुला भाल ढुइसे सडक घ्यालम भन्द ताबारी खाम्बा ताबासे राङ निभा ग्यालम ला दुई गोसी जेखेन दिम ग्याम फिर्क्याप थोनबारी ग्रेन प्रहरी घेजाङसे मोकोन्दा मोइजेन लाबा मुला रोङसा ब्लोन शिशिर खनालसे हिउलो पोबारी स्यार थुम्री विज्ञ कादेथेन काठुई लातोला बिसी सुङबामुला ग्रामीण आदर्श बहुमुखी क्याम्पसला गिक्सा क्याम्पस ठोङसेङ वाल्टी तिनी याम्बुरी लेङमो थान्सिबान ब्लोन खनालसे हिउल थेन हिउलबादा ज्याबा ग्यालम्री भोरबारी प्राज्ञिक थुम्ला या ग्रेन ताला बिसी सुङबामुला ब्लोन खनालसे दारेम नेपालला स्यार खारङबा तादोला भिवा ताम्री काठुई लातोला सुङबान तलब भत्ता किनबादा लाभा आन्दोलनसे जेखेन हिउल पोबारी आखाम बिसी सुङबामुला
नेपाली काङ्ग्रेसला गाछाला चोहोथेन गाछाला काइब्लोन शेरबहादुर देउबासे युल्ला ठिमखाङसे राङदा गाछा हेन्सेन न्याय पिनबान खाबासे ठिमखाङ्री राङला विश्वास मुलाबिसी सुङबा मुला काङ्ग्रेसला देउबा पछ्यासे सेङबा सोमराला युलबाङ वाल्डी लेङमो थान्चीबान गाछाला चोहो देउबासे पञ्चायतला दुई हेन्सेन राङ थेन राङला पार्टीदा ठिमखाङसे न्याय पिनबा मुलाबिसी सुङबा मुबा चुराङलासिन नेकपा एमाले चोहो थेन गाछाला काइब्लोन केपी शर्मा ओलीसे पार्टीला गोबोन गोबोन दा दान थेन राङला स्वार्थ भीमा तोर रेसी युल थेन मिनीला हित्री घे लाबारी सुङबा मुला जापाला भिर्ता मोडरी तिनी सेङबा घेकोरी लेङमो थान्सीबान चोहो ओलीसे राङ काइब्लोन थेन पार्टी चोहो दोबारी बिसी ग्लेठिमरी खाबा आहिन बिसी सुङबा मुला युल्डी तेबा बिजुलीला बजार लेना लाबारी निजी थुम्दा पो किनबारी ऊर्जा थुम्ला मिनीका देशे सुङबा मुला राङबाङ ऊर्जा उत्पादन संघ नेपाल इपानसे ललितपुरी सेङबा नेपाल भारत ऊर्जा छोङ निजी थुम घुङरी तबा काठुरी थेनीका देशे गोर्की थुम ग्याम्से जेखेन तोबा दे बिदुलीला बिजुलीला छोङ ताबारी आखाम सुङबान प्रतिस्पर्धा विद्युत बजार लाबारी निजी थुम्लान पो लेना लातोला बिसी सुङबा मुबा ऊर्जा किन्यो थिएन सिंचाई ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठ से युल्डी मुबा क्युई थुम्ला विद्युत तेबारी बङ लातोला सुङबान युल्दा नोर समृद्धिला घ्यालाम्री बोरबारी मोकोन से रो लातोला बिसी सुङबा मुला जोङ प्रशासन गेजाङ बैतडीसे आपाङ्ग ताबा मिनी कादेला दिम दिमरिन नागरिकता सेवा पिनबारी माइबन मुला जोङ सदरमुकाम दोना खाबारी निबारी आखाम्बा मिनी कादेदा गोसी प्रशासनसे दिम दिमरिन दोषी नागरिकता पिनबारी माइबा मुला बिसी जोङला सिडिओ मिना अर्यालसे सुङबा मुला सेवा सेङबारी जोङला स्थानीय ताथेन डिक्सी थेराङबा मिनी कादेला मिन किनबारी तिबा मुला रोङसा ब्लोन सिसिर खनालसे इन्डोनेसियाला फ्लोरेश्री निवा साङ्गुल ग्याम ताबा छेतिरी राङदा लानन आच्याबा घामबा मुला बिसी सुङबा मुला साङ्गुला विनाश पुइसी जिन्बा नेपालसे प्राकृतिक विपदला दुङ्गाल गोबा मुला सुङबान ब्लोन खनालसे सामाजिक सञ्जाल ग्याम नेपाल सरकार थिएन नेपाली मिनी ग्याम इन्डोनेसिया सरकार थिएन होजा ह्युल्ला मिनिदा एकाबद्धता मुला बिसी सुङबा मुला काभ्रे पलाञ्चोक ला मण्डन देउपुर नगरपालिकासे सेङबा टिभी स्क्रिनिङ अभियान ला धुइरी गोर्नी ओडारी मेन्दोसोम मिनिरी खाप्टे ह्याम स्याप्पा मुला नग लुई गेजाङ थेन जन्त्र नेपाल ला प्राविधिक रोरी सेङबा अभियान डी लुई परीक्षण लामा गोर्नी ओडारी मेन्दो सोम भिनेरी खाप्टे ह्याम स्याप्पा हिन्ला मण्डन देउपुर नगरपालिका चुइला चन्डेनी मण्डन लुई चौकिरी सेङबा एनसिडी स्क्रिनिङ थेन एक्स एक्सरे ग्याम टिभी स्क्रिन ला गेखोर री च्यामा ग्यार्जा गिक्चे मेन्दो निचुइ मिनिका मिनेरी लुई जाँच लाबा मुबा चुराङ लासिन झापारी जापानिज इन्सेफलाइटिस जेई ला संक्रमण लेबन निबा मुला लिछाला धुइरी मेची नगर ला मेन्दो गिक झा कोलारी संक्रमण मराङबा छ्याम जोङरी संक्रमण ताबा कादे मेन्दो चुई धोबा मुला इन्सेफलाइटिस ताबा कादेरी मेन्दो गा मिनी सिबा मुला बिसी लुई गेजाङसे पाङबा मुला गेजाङसे पाङबा अनुसार सिबा कादेरी मेन्दो सोम झा कोला थिएन मेन्दो नि जामे कोला मुला लामखुट्टेसे जीमा कोबा जापानिज इन्सेफलाइटिस ग्याम सोबारी बर्खाला धुइरी दिम गाम्री क्यार क्युई छ्याबारी आपिनबाथेन तोबा समधानी किनबारी लुई गेजाङ से पाङबा मोकोन्दा मोइजेन लासी पाङबा मुला स्यान्सुबान मुबा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला।

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमै समाचार सुनल जा। साउनमा शुक्ल पक्ष तृतीया तिथिसँग शनि दिनसँ झुलनोत्सव पर्व शुरू भेलापर मिथिलामे झूला गीत गुञ्जयमय भेल अछि। सखी हे झूला पड़ल फूल बगियाक डार, सीता सङ्ग झूलत रघुबर मन हर्षित पार। गीतक लयमे हिन्दू परम्पराक आराध्य देव भगवान श्री विष्णु आ भगवती लक्ष्मीक पुकार कयल जायवला एहि पर्वमे देवी देवताक अवतार मानल जायवला राम सीता आ राधा कृष्णक प्रतिमा कलात्मक झूलनमे राखिके ई झूलना पर राखिके भक्ति गीतक लयमे ई गीत गाओल जाइत अछि। साओन मासक पूर्णिमाक दिन समापन कयल जायवला ई पर्व मिथिलाक विशिष्ट सांस्कृतिक उत्सव रहैत आयल अछि। शनि दिन पर्व शुरू भेला पर मिथिला क्षेत्रमे एखन ई महोत्सव बनल अछि। झूला उत्सवमे मिथिलाक लोकलयमे झूला मलार आ कजरी गीत गयबाक चलन अछि। झूलनोत्सव कहल जायवला ई पर्व प्राचीन मिथिला क्षेत्रक सब दिस मनाओल गेलाक बावजूदो अखन महतरीक मटिहानी स्थित लक्ष्मीनारायण मठ आ मन्दिर एवं जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरके प्रसिद्धता अलग रहल अछि। प्राचीन मिथिलाक राजधानी जनकपुरधाम सीताक नैहर रहल आ जमायके प्रसन्न कराओल जेबाक मैथिल परम्परा अनुसार ई पर्व मनाबऽ लागल। विक्रम संवत 1787 दिस संत सूर किशोरदास शुरू कयल मानल जाइत अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खरक राज पौड़ेल सरकार धार्मिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण में प्रतिबद्ध रहल बतौलन अछि। महतरिक बर्दिवास वार्ड नंबर 5 स्थित टुटेश्वरनाथ महादेव मंदिरक अवलोकन आ पूजा अर्चना करैत मंत्री पौड़ेल टुटेश्वरनाथ महादेव मंदिर संरक्षण समितिक ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण करैत सरकार देशक धार्मिक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदाक संरक्षण आ समयोचित विकासक बात पर प्रतिबद्ध रहल स्पष्ट कयलनि। समितिक अध्यक्ष राजाराम यादव सँ ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण करैत मंत्री पौड़ेल कहलनि सरकार ई धार्मिक स्थलक प्रवर्धन आ पर्यटकीय संभावना विकास संबंधमे स्थानीय समुदाय सँ समन्वय करैत आगू बढ़बाक लेल प्रतिबद्ध अछि। मधेशक कैलाश मानल जायवला टुटेश्वरनाथ महादेव संबंधमे अति प्राचीन किंवदंती स्थानीय सँ सुनल ओ कहलनि जे महतरी जिलामे पड़ैत अछि। एहिसँ पहिने मन्दिर परिसरमे मंत्री पौड़ेलक स्वागत करैत समितिक अध्यक्ष यादव टुटेश्वर धामक रामायण तथा महाभारतकालीन किंवदंती सम्बन्धमे अध्ययन अन्वेषण करबा अनुरोध करैत हुनका ध्यानाकर्षण पत्र बुझौने छलथि। समिति हरेक साल साउन मासमे बोलबम मेलामे लाखो श्रद्धालु भक्तजन सब सहभागी होइत गेल। एहिठाममे पहुँचबाक मार्गमे विश्राम चौतारी पेयजल बिजली आ शौचालयक प्रबन्धके लेल ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत अनुरोध कयलक अछि। ई स्थान निकटके वन संरक्षण मांडवी गंगा नदीमे घाट आ तटबन्ध एवं धर्मशाला निर्माण एवं मन्दिरक दीर्घकालीन संरक्षण तथा संवर्धनके उपाय सम्बन्धमे विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करबाक लेल सेहो समिति ध्यानाकर्षण करौलक अछि। मंत्री पौड़ेलक सङ्गहि अवलोकन भ्रमणमे रासपा मधेस प्रदेशक सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य तपेश्वर यादव आ महतरिक वार्ड नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा महतरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद कुमार महतो सेहो सहभागी छलथि। एहि बीच मंत्री पौड़ेल आइ महतरीक विभिन्न देवस्थल के अवलोकन तथा पूजा अर्चना कयलनि अछि। ओ बर्दिवास वार्ड नंबर 5 टुटेश्वर स्थित टुटेश्वरनाथ महादेव मंदिर आ बर्दिवास वार्ड नंबर 4 माय स्थान स्थित पंचधुरा माय मंदिर के अवलोकन तथा पूजा अर्चना कयलनि अछि। चूड़े पहाड़ी श्रृंखला निकट के दुनू धार्मिक स्थल अत्यंत रमणीय ठाम में रहल ओ बतौलनि। मंदिर क्षेत्रक अवलोकन आ पूजा अर्चना पश्चात मंत्री पौड़ेल कहलनि जे ई ठाम धार्मिक पर्यटन के दृष्टि सँ बहुत संभावना युक्त रहल अछि। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता सहितक टोली समस्या पहचान कर प्रभावकारी समाधानक उपाय खोजबाक लेल आइ राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पतालक निरीक्षण कयलनि अछि। अनुगमन के क्रम में मंत्री मेहता अस्पताल में सघन उपचार कक्ष ICU वेंटिलेटर सहित अन्य अत्याधुनिक उपकरण जरानक लेल ठामक अभाव भेलाक कारणे भादव भीतर नया भवन निर्माण का अस्पताल के हस्तांतरण करबाक लेल सरकार भेल निकाय के निर्देशन देलनि अछि। सप्तरी के गजेंद्र नारायण सिंह
अस्पताल तथा प्रस्तावित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानक अवस्था जानकारी लेबाक लेल राजविराज पहुँचल स्वास्थ्य मंत्री मेहता अस्पताल में भवन के अभाव रहलाक कारणे यथाशीघ्र निर्माण का हस्तांतरण करबाक लेल सरकार आ सरकार भेनिहार के आग्रह कलन। लगभग 31 करोड़ टकाक लगान में निर्माण कैल गेल अ अस्पतालक नवनिर्मित भवन से सेवा संचालन कलाक बाद अठामक अधिकांश समस्या समाधान हेबा कहित ओ आवला भादव मास भीतर भवन हस्तांतरण का अस्पतालक सेवा प्रवाह व्यवस्थित बनेबाक सहकार आ समन्वय करबाक लेल निर्माण कंपनी के निर्देशन दलन। अस्पतालक सभाकक्ष में सरकार भेल निकाय के प्रतिनिधि संग छलफल करित मंत्री मेहता स्वास्थ्य क्षेत्रक समस्या बुझबाक लेल आ समस्या पहचान कर समाधान खोजबाक लेल स्थलगत अवलोकन कैल बतौलन। टोली हनुमान नगर कंकालनी नगर पालिका स्थित भारदा अस्पताल राजविरा नगर पालिका स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल तथा प्रस्तावित रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण स्थलक स्थलगत निरीक्षण कैलक। हाल 50 सैया में संचालन भ रहा अस्पताल में सेवा विस्तार का 100 सैया पहुँचबाक तैयारी भ रहा वो जानकारी दिलन। राजविराज में रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालन में अलाक बाद अठामक सर्वसाधारण के उपचार में सहज आ यथाशीघ्र प्राप्त हवाक ओ विश्वास व्यक्त कलन। मंत्री मेहता प्रतिष्ठानक लेल चालू आर्थिक वर्ष में 50 करोड़ टका बजट छुटियाल गेल जानकारी दैत आब ऐन पारित कर प्रतिष्ठानक निर्माण सेहो जल्दिए आगू बढ़ेबाक बात बतौलन। टोली में स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री मेहता प्रतिनिधि सभाक सदस्य डॉक्टर अंकिता ठाकुर आ पुष्पा चौधरी सहित सहभागी छलथि। अस्पतालक अधिकृत सूर्यकांत झा हाल 50 सैयाक स्वीकृति प्राप्त कर भारी संख्या में रोगी के सेवा प्रदान करते आयल बतौलन। वो थप सैया विस्तार करबाक लेल तथा नर्सिंग कॉलेजक लेल नया भवन तैयार भेलाक बावजूदो जनशक्ति आ बजट अभाव के कारण संचालन नहीं भ सकलाक कारणे आवश्यक व्यवस्था करबाक लेल मंत्री मेहता से आग्रह कलन। ओ अधिक समय से अस्पताल विकास समिति गठन नहीं भ सकलाक कारणे समिति गठन कल जेबाक प्रस्तावित रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानक निर्माण

पारदर्शी आ परिणाममुखी राजनीतिक संस्कारक विकास करबाक लेल रासपा ई कार्यक्रम आगू आनऽ लागल बतौलनि। कार्यक्रम अंतर्गत पार्टीक मंत्री सब मास में कम से कम एक बेर अनिवार्य रूप में केंद्रीय पार्टी कार्यालय में उपस्थित भ नागरिक आ पार्टी पंक्ति संग संबंध प्रत्यक्ष संवाद में आवा पड़त। रासपा के संसदीय दलक सचेतक प्रकाश चंद परियार जमीन में रहल आवाज के सीधा राज्यक नीति निर्माण आ कार्यान्वयन के तह धरि जोड़बाक लेल पुलक काज करबाक लेल ई कार्यक्रम संचालन करय लागल बतौलनि। कार्यक्रमक पहिल चरण में साँझ एक घंटाक अवधि में पूर्ण रूप में आम नागरिक लेल खुला रखबाक आ ओहिठाम उपस्थित मंत्रीगण सीधा सर्वसाधारण जनताक शिकायत समस्या अपेक्षा आ सुझाव सब सुनत। दोसर चरण में मंत्री पार्टी केंद्रीय समिति सदस्यगण आ प्रतिनिधि सभा सदस्य सब बीच संयुक्त बैठक बैसक। पहिल चरण में नागरिक सब प्राप्त सुझाव सभाक आधार पर तथा देशक समसामयिक बहुआयामिक आ नीतिगत विषय में सघन छल फलायत। नागरिक सरकार मंत्री व्यवस्थापिका सांसद आ संगठन केंद्रीय समिति बीचक समन्वय के चुस्त बनबैत नागरिकक मुद्दा के प्रभावकारी ढंग से संबोधन करबाक संबंध में साधारण रणनीति तय करबाक लेल ई कार्यक्रम तय कयल गेल सचेतक परियार बतौलनि। रोधक प्रहरी अदालत से फैसला भ फरार रहल प्रतिवादी पकड़लक अछि। प्रहरी विभिन्न मुद्दा में अदालत से सजाए टुकलाक बाद फरार रहल 14 गोटे प्रतिवादी के पकड़लक अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिमरा वितरण केन्द्र अंतर्गत 7,81,49,00,000 टका विद्युत महसूल बक्यौता रहल जनौलक अछि। 82-83 के आखार में सांधारिक विवरण अनुसार बक्यौता के भारी हिस्सा 12 परसार औद्योगिक कॉरिडोर के पैघ उद्योगक डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनक महसूल रहल जनाओल गेल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर पक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन 5 सूत्रीय निष्कर्ष के साथ हुआ संपन्न। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कल से नागरिक नीति और नेतृत्व कार्यक्रम करेगी शुरू। कार्यक्रम अंतर्गत मंत्रियों को महीने में कम से कम एक बार नागरिकों और पार्टी पंक्ति से करना होगा प्रत्यक्ष संवाद। देश के ज्यादातर स्थानों में हो रही है बारिश, सतर्कता बरतने का मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने किया आग्रह। रोलपा, बाजुरा और जाजरकोट के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का होगा भौगर्भिक अध्ययन। और इंडोनेशिया में शक्तिशाली भूकंप की चपेट में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 50 से अधिक। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के संस्थापन इतर पक्ष का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज 5 बिंदुओं के निष्कर्ष के साथ संपन्न हो गया। पूर्व महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला की अध्यक्षता में काठमांडू में आयोजित सम्मेलन में फैसला लिया गया कि 14वें महाधिवेशन से निर्वाचित केंद्रीय कार्य समिति के निर्णय और आयोजन के तहत 15वां महाधिवेशन कराया जाएगा। सम्मेलन ने देश की मौजूदा स्थिति को गंभीर बताते हुए राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ संवाद कर राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को मजबूत करने और सनातन धर्म को देश की पहचान के रूप में आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इसके अलावा वर्तमान संविधान में जनभावना के अनुरूप जरूरी संशोधन के लिए संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सभी संबंधित पक्षों से संवाद कर समाधान निकालने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में पेश प्रस्तावों और सुझावों को समेटकर अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी एनपी साउथ की अध्यक्षता वाली समिति को दी गई है। समापन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री और निवर्तमान पार्टी सभापति शेर बहादुर दिवा ने न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का व्यापक समर्थन मिला है। वहीं डॉक्टर शशांक कोइराला ने कहा कि सम्मेलन से पार्टी को एकजुट करने में मदद मिलेगी। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आगामी भाद्र महीने से नागरिक नीति और नेतृत्व कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। पार्टी का कहना है कि इसका उद्देश्य नेताओं को नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और परिणाममुखी बनाना है। कार्यक्रम के तहत पार्टी के मंत्री महीने में कम से कम एक बार केंद्रीय कार्यालय में उपस्थित होकर आम नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे। कार्यक्रम के पहले चरण में मंत्री नागरिकों की शिकायतें, समस्याएं, अपेक्षाएं और सुझाव सुनेंगे। दूसरे चरण में मंत्रियों, केंद्रीय समिति के सदस्यों और सांसदों की संयुक्त बैठक होगी जिसमें नागरिकों से मिले सुझावों और समसामयिक नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के संसदीय दल के सचेतक प्रकाश चंद्र परियार ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों की आवाज को सीधे सरकार की नीति और क्रियान्वयन के स्तर तक पहुंचाना है। सरकार पश्चिमी नेपाल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में भूगर्भीय अध्ययन करेगी। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में रोलपा, बाजुरा और जाजरकोट के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में प्रारंभिक भूगर्भीय अध्ययन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 3 दिनों के भीतर विशेषज्ञों की टीम प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जाएगी। इस बीच रोलपा, जाजरकोट और बझांग के खोज, बचाव और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत, मृतकों के परिजनों को सहायता और घायलों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने को कहा गया है। बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़क, पेयजल, सिंचाई जैसी आवश्यक सेवाओं को जल्द बहाल करने तथा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आवास पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि मानसून अभी सक्रिय है और पहाड़ी तथा हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बारिश से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। लोगों से सतर्क रहने, जोखिम वाले इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं का पालन करने की अपील की गई है। देश के अधिकांश स्थानों में बारिश हो रही है। लगातार बारिश के बाद जाजरकोट की भेरी नगरपालिका 2 रिसांग में आए भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लापता हैं। भूस्खलन की चपेट में घायल हो चुके 52 वर्षीय केदार कार्की की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज कोहलपुर में मृत्यु हो गई। वहीं लापता रहे 4 में से 54 वर्षीय उमा सिंह खत्री और 83 वर्षीय रति खत्री के शव बरामद हुए हैं। ये जानकारी सशस्त्र प्रहरी बल ने दी। अभी भी लापता रहे लोगों को ढूंढने के लिए नेपाली सेना सहित सशस्त्र के इंस्पेक्टर कमल कार्की के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन तालीम प्राप्त सशस्त्र प्रहरी और नेपाल प्रहरी की संयुक्त टोली को तैनात किया गया है। भूस्खलन से 8 घरों में क्षति हुई है। इस बीच कर्णाली प्रदेश सरकार ने रिसांग के भूस्खलन पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री मुहैया कराई है। इसी तरह रोलपा की लुंगरी गांवपालिका 5 धैरेनी में घर के ऊपर आए भूस्खलन में एक 72 वर्षीय वृद्धा अम्मी गुरुंग की मौत हो गई। बागलों की निसीखोला गांवपालिका 2 के धारा टोल में भूस्खलन गिरने से 8 घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं करीब 40 घर भूस्खलन के उच्च जोखिम में हैं। वार्ड अध्यक्ष कुवीर विश्वकर्मा के मुताबिक भूस्खलन से कुछ घरों, तबेलों और शौचालयों को आंशिक नुकसान हुआ है। कई घरों की छत और बाहरी हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं और दीवारों में दरारें आई हैं। उन्होंने मानसून सक्रिय रहने के कारण दोबारा भूस्खलन गिरने की आशंका जताते हुए जोखिम वाले परिवारों से सतर्क रहने की अपील की है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# हेस्ट डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के मुताबिक देश भर में मानसूनी वायु का प्रभाव बना हुआ है। आज रात हिमालयी क्षेत्रों के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम की पहाड़ी इलाकों में कई स्थानों तथा कोशी और बागमती के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश से जनजीवन के साथ कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण और सड़क तथा हवाई यातायात प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जारी सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की अपील की है। निकोबार एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि एमाले का गठन पद या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश में परिवर्तन और जनता की सेवा के लिए हुआ है। झापा के बिरता मोड़ में मिशन पार्टी जागरण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ओली ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूर्वजों के त्याग और बलिदान से सीख लेकर आगे बढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने पार्टी को संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक रूप से मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि केवल वास्तविक सदस्यों का ही सदस्यता नवीकरण किया जाना चाहिए। अध्यक्ष ओली ने कहा कि पद के पीछे भागने के बजाय देश और जनता के लिए त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहना ही एमाले कार्यकर्ताओं की असली पहचान है। परराष्ट्र मंत्री शशि खनाल ने कहा है कि देश के रूपांतरण के लिए शिक्षा क्षेत्र में बौद्धिक बहस और आंदोलन जरूरी है। काठमांडू में ग्रामीण आदर्श बहुमुखी कैंपस की पहली कैंपस सभा का उद्घाटन करते हुए मंत्री खनाल ने कहा कि समाज और देश को सही दिशा में ले जाने में शैक्षणिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि नेपाल की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर गंभीर बौद्धिक बहस जरूरी है। केवल वेतन और भत्ते के लिए होने वाले आंदोलनों से देश का रूपांतरण संभव नहीं है। पूर्व मंत्री राजेंद्र श्रेष्ठ ने युवाओं को देश में ही रहने के लिए अनुकूल माहौल बनाने को सरकार की प्राथमिकता बताया। भारत के थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ नेपाल के 4 दिवसीय दौरे पर आज काठमांडू पहुंचे हैं। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजाराम बस्नेत के मुताबिक राष्ट्रपति एवं नेपाली सेना के परमाधिपति रामचंद्र पोडेल कल राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित विशेष समारोह में जनरल सेठ को नेपाली सेना के मानद महारथी की उपाधि प्रदान करेंगे। इसी दिन नेपाल और भारत के दोनों सेना प्रमुखों के बीच जंगी अड्डे में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। नेपाल और भारत के बीच सन 1950 से एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद महारथी की उपाधि देने की परंपरा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया के पूर्वी क्षेत्र में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से कम 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप के बाद फ्लोरेस द्वीप के कई इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिसके मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव दल तलाश अभियान में जुटे हैं। भूकंप से 900 से अधिक घर ध्वस्त और करीब 450 क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिजली, संचार और सड़क सेवाएं प्रभावित होने से राहत पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं। अधिकारियों ने लोगों से आफ्टर शॉक के खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। रूस और यूक्रेन के बीच रात भर हुए हमलों में दोनों देशों में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है। रूस के तोव क्षेत्र में यूक्रेनी हमलों में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि बेलगोरोद में एक बस को निशाना बनाए जाने से एक महिला की जान गई। मॉस्को क्षेत्र में भी ड्रोन हमले में 83 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हुई। मॉस्को के मेयर के मुताबिक राजधानी की ओर बढ़ रहे 600 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया। वहीं यूक्रेन में रूसी हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है। क्रिवी रिह और ज़ापोरिज़्या में लोगों की जान गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। कीव में भी हमलों के बाद आग लगने की घटनाएं सामने आईं। रूस ने दावा किया है कि उसके हमलों में यूक्रेन के हथियार और ड्रोन के कल पुर्जे बनाने वाले ठिकानों, क्रेमेंचुक तेल रिफाइनरी और ओडेसा के पास एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर पक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन 5 सूत्रीय निष्कर्ष के साथ हुआ संपन्न। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कल से नागरिक नीति और नेतृत्व कार्यक्रम करेगी शुरू। कार्यक्रम अंतर्गत मंत्रियों को महीने में कम से कम एक बार नागरिकों और पार्टी पंक्ति से करना होगा प्रत्यक्ष संवाद। देश के ज्यादातर स्थानों में हो रही है बारिश, सतर्कता बरतने का मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने किया आग्रह। रोलपा बाजुरा और जाजरकोट के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का होगा भौगर्भिक अध्ययन। और इंडोनेशिया में शक्तिशाली भूकंप की चपेट में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 50 से अधिक। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: फोर जी एलटीई मोबाइल सेट संबंधी नेपाल टेलिकम को सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: मनोरञ्जन र विविध जानकारी सँगै यो हो रेडियो पत्रिका सिलसिला,
6: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट सिलसिला
5: सिलसिला।
7: रेडियो पत्रिका सिलसिलामा प्राविधिक मित्र पराग पोखरेल सहित साथी मनुका कुमार अनि म हरिगिरीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। रेडियो पत्रिका सिलसिला हरेक आइतबार बिहान 11 बजेको समाचार पछि र यसका साथै आइतबारै राति 10 बजेको हिन्दी भाषाको समाचार पछि पुनः प्रसारणमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट साप्ताहिक रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न सेगमेन्टहरू रेडियो पत्रिका सिलसिलामा हुनेछन्। अझ भनौ, खोजमूलक सामग्रीको आधारमा यो कार्यक्रमलाई हामीले तयार पारेका हुन्छौँ।
5: कार्यक्रममा हामीले मनोरञ्जनका लागि गीत, विज्ञान उपयोगी सामग्री, स्वास्थ्य चर्चा, सामान्य ज्ञानका जानकारी, प्रेरक एवं रोचक प्रसङ्ग लिएर आउने गर्दछौँ। कार्यक्रममा समावेश हुने सामग्री विभिन्न सञ्चार माध्यम, अनलाइन समाचार एजेन्सी र न्यू मिडियाबाट साभार स्रोत हुनेछन्।
7: त्यसैले यो कार्यक्रमलाई पूरा समय सुन्नका लागि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ।
5: रोचक र ज्ञानवर्धक सामग्रीको संगालो, यो हो रेडियो पत्रिका सिलसिला,
6: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालमा सिलसिला
5: सिलसिला।
7: अहिले हामी कार्यक्रम सिलसिलामा छौँ। अब हामी यहाँहरू माझ राख्दैछौँ विभिन्न विज्ञान उपयोगी प्रसङ्गहरू। गर्मीको समयमा चलेको हावाले किन शीतलता प्रदान गर्ने गर्दछ त? विज्ञान उपयोगी प्रसङ्गमा यो सामग्री राख्दैछौँ। हावा स्थिर भए पनि अणुहरू जहिले पनि गतिशील हुन्छन्, जसले गर्मीबाट ताप बोकेका अणुहरूलाई लान्छन्। तर यदि हावा बहिरहेको छ भने यो प्रक्रिया तीव्र हुन्छ र शरीरबाट ताप छिटो छिटो बाहिर आउने कार्य गर्दछ। फलस्वरूप हामीलाई शीतलताको अनुभव भएको हुन्छ। गर्मी भएको बेला बेलामा शरीरले ताप छोडिरहेको हुन्छ। यस अवस्थामा तापलाई छालाको सम्पर्कमा रहेको हावाका अणुहरूले लिने गर्दछन् र ती अणुहरू तात्ने पनि गर्दछन्। हावा चलेको बेला ती तातो अणुको ठाउँमा चिसो अणु आउँछन् र तिनीहरूले पनि तातो लिने गर्दछन्। यसरी शरीरबाट ताप बाहिर जाने क्रम छिटो छिटो हुन्छ, जसको फलस्वरूप हामीलाई शीतलताको अनुभव हुने गर्दछ। अहिले हामी कार्यक्रम सिलसिलामा छौँ।
5: हाम्रो नाकबाट बग्ने सिगान के हो त? अबको लागि यो प्रश्न छ। मानव शरीरमा कुनै पनि अङ्गको नाम लिनुहोस्, त्यसको कुनै न कुनै कार्य अवश्य हुन्छ। यतिसम्म कि नाकभित्र हुने सिगानको पनि आफ्नै विशिष्ट कारण छ। नाक हाम्रो शरीरभित्र हावा छिर्ने बाटो हो, तर हाम्रो शरीरभित्र छिर्नुभन्दा पहिले हावालाई तातो पार्ने र हावामा रहेका धुलाका कणहरूलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। नाकमा रहेका रौँहरूले हाम्रो शरीरभित्र छिर्ने हावामा रहेका कणहरूलाई केही मात्रामा रोक्ने काम गर्छ। साथै नाकदेखि फोक्सोसम्म पुग्ने श्वासनलीको भित्तामा पनि थुप्रै ससाना रौँहरू हुन्छन्। यी रौँहरूलाई सिलिया भनिन्छ। हाम्रो नाकभित्र वास्तवमा पारदर्शी सिङ्गार हुन्छ, तर हामीले सास फेर्ने हावामा रहेका धुलाका कणहरूलाई सिलियाले रोक्छ र यी कणहरू सिङ्गानबाट मिसिन्छन्। यसले गर्दा सिङ्गान बाक्लो र अपारदर्शी हुन जान्छ। हामीले फेर्ने प्रत्येक सासमा धुलाका लाखौँ कणहरू हुन्छन्। तपाईँ जतिसुकै सफा सहरमा या गाउँमा अथवा जङ्गलमै बसिरहनु भएको भए पनि तपाईँले सास फेर्ने बेला धुलाका लाखौँ कणहरू नाकबाट भित्र छिरिसकेका हुन्छन्। धुलोका कण बिनाको हावा पाइने स्थान भनेको जमिनबाट 1000 किलोमिटर परको समुद्री सतह हो। हामीले सास फेर्दा धुलाका कणहरू मात्र नभई लाखौँ ब्याक्टेरियाहरू पनि नाकभित्र छिर्छन्। तर सिङ्गानमा एन्टिसेप्टिक भएको कारण यी मध्ये थुप्रै ब्याक्टेरियाहरू सिङ्गानसँग मिसिएर नष्ट हुन्छन्। त्यसैले सिगानले हामीलाई स्वस्थ राख्न ठुलो भूमिका खेल्छ।
7: अब यहाँ अर्को प्रसङ्ग छ। प्राचीन कालमा तास खेलको सुरुवात कसरी भयो त? एक जानकारी दिँदैछौँ। सुरत, पान, चिडी र इँटाका बुट्टाका एक्कादेखि गुलाम बेगम, जसलाई हामी मिस्सी पनि भन्ने गरिन्छ, र बादशाहका चित्र समेत 13 पत्ती हुने अनेकौं खेल खेलिने कागजका चक्कीहरूलाई तास भन्ने गरिन्छ। प्राचीन कालमा तास ज्ञानको वृहत क्षेत्रसँग सम्बद्ध थियो। त्यस बेलाको विश्वविज्ञान प्रविधिका क्षेत्र ज्यादै पछि परेका थिए। त्यस बेला तासका माध्यमबाट मानिसलाई अनेकौं ज्ञान गराइन्थ्यो। नक्षत्र विज्ञान तथा ज्योतिष विद्यासँग तासको गहिरो सम्पर्क र सम्बन्ध छ। एक वर्ष भरिमा 52 हप्ता हुन्छन् भन्ने कुरा तासका 52 पत्तीबाट ज्ञान दिइन्थ्यो। तासमा हुने रातो रङले शुक्ल पक्ष र कालो रङले कृष्ण पक्षको संकेत दिने प्राचीन चलन थियो। तासका 4 रङले वर्षभरिमा 4 ऋतु हुने संकेत गर्दथे। हामीले वर्षमा 6 ऋतुहरू, जस्तो कि वसन्त ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमन्त, शिशिर भने पनि पाश्चात्य मुलुकमा 4 ऋतु मात्र मानिन्छन्। तासको संख्यालाई जोड्ने हो भने अयमास वर्षको 364 दिन हुन जान्छ। ठेलीमा भएको जोकरलाई एक एक मानेर त्यसमा पहिलो एक जोड्दा 365 दिनको पूर्ण एक वर्ष हुन्छ। अर्को जोकरको एक पत्ती पनि जोड्दा मलमास भएको वर्षको 366 दिन हुन जान्छ। मलमासलाई पुरुषोत्तम महिना पनि भन्ने गरिन्छ। कतिपय मानिसहरू असल र खास साहित्य हेर्न पनि तासको प्रयोग गर्दछन्। तास खेल चीनबाट सुरु भएको हो। तासलाई हिजो आज जुवाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जुन यसको बौद्धिक महत्वलाई घटाउनु हो। अहिले हामी रेडियो पत्रिका सिलसिलामा छौँ।
5: कार्यक्रम सिलसिलामा अबको लागि भने, बलिरहेको आगोको पछाडिका वस्तुहरू किन हल्लिरहेको देखिन्छ? यो रोचक प्रसङ्ग। आगो लागेको स्थान वरिपरिको हावा आगोको कारण तातो हुन्छ, तर आगो एकै नासले बल्ने नहुँदा यसको वरिपरिको हावा पनि कहिले तातो त कहिले तुलनात्मक रूपमा चिसो हुन्छ। यसरी आगो वरिपरिको हावाको तापक्रम बदलिरहन्छ, परिणाम स्वरूप हावाको घनत्व पनि सधैँ बदलिरहन्छ, जसको कारण त्यस हावाबाट गुज्रने प्रकाशको गति अनि दिशा पनि परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसैले आगोको पछाडि राखिएका सामानहरू हल्लिरहेको देख्छौँ।
7: पञ्चे बाजा के हो त? यो बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। हिन्दू धर्ममा पञ्चे बाजा वैदिक युगदेखि चल्दै आएको बाजा हो। पञ्चे बाजा समूहमा बजाइने आजका दमाहा, झ्याली, ट्याम्को, ढोलकी र सहनाईको नाम त्यस बेला अर्कै थियो। दमाहालाई वेद युगमा दुधुबी र भेरी भनिन्थ्यो, झ्यालीलाई अधाती, ढोलकीलाई पटह र सहनाईलाई श्रृङ्ग भनिन्थ्यो। श्रृङ्ग प्राचीन सुशिर वाद्य हो, फुकेर बजाइने हुनाले यसलाई त्यसरी नामकरण भएको हुन सक्दछ। ट्याम्को दमाहाकै सानो रूप भएकोले यो त्यही परिवार अन्तर्गत पर्दछ। पौराणिक नेपालमा पनि पञ्चेबाजाको चलन निकै भएको थाहा पाइन्छ। रामायण, महाभारत र अन्य पुराणहरूमा पञ्चेबाजाको सन्दर्भ देख्न सकिन्छ। प्राचीन कालदेखि आजसम्म पनि धार्मिक अनुष्ठान र देव मन्दिरहरूमा पञ्चेबाजा बज्दै आएको छ। नेपाली समाजमा मेचीदेखि महाकालीसम्म यो वाद्य समूह लोकप्रिय छ। शोकाकुल वातावरणमा बाहेक यो बाजा जुनसुकै हर्ष र खुसियालीमा बज्ने गरेको पाइन्छ। नेपाली संस्कारमा जन्मेदेखि विवाह, व्रतबन्ध, चाडबाड, जात्रा, मेलापात, तिथि पर्व, पूजा आजा आदि हरेक उत्सवमा पञ्चेबाजा घन्केको पाइन्छ। मन्दिरदेखि नेपाली समाजसम्म सगुनी जातले पञ्चेबाजा बजाई आएका छन्। प्राचीन कालदेखि हिन्दू समाजले पञ्चेबाजाको सांस्कृतिक महत्वलाई अँगाली आएको छ। पछि पछि यसलाई ठुलो रूप दिन नरसिंह र कर्णाल नामक दुई सुधीर वाद्य मिलाई त्यसमा एक एकवटा दमाहा र सहनाई थपेर नौमती बाजाको नामकरण गरियो। यस समूहमा जम्मा नौ थान बाजा बजाउने गरिन्छ। आजकल राष्ट्रिय उत्सवका अवसरमा पनि ती वाद्य समूहहरू सुन्ने गरिन्छ। अहिले हामी रेडियो पत्रिका सिलसिलामा छौँ।
5: सूर्यमुखी फूल किन सूर्यतिरै फर्किन्छ, अबको लागि यो प्रसंग। सूर्यमुखी फूलमा अक्सिन भन्ने एक प्रकारको तत्व रहेको हुन्छ। यसले बिरुवाको कोषहरूलाई तन्किन वा लम्बिन मद्दत गर्छ। अक्सिन सूर्यको प्रकाश परेको ठाउँबाट सरेर ओझेल भएतिर आउँदछ। बिहान पूर्वबाट सूर्य उदाउँदा फूलको डाँठमा भएको अक्सिन घाम नभएपट्टि वा पश्चिमतिर जम्मा हुन जान्छ र त्यसतर्फका कोषहरू बढी लम्बिन थाल्छन्। त्यसैले फूल स्वतः पूर्वतिर ढल्किन जान्छ। सूर्य सर्दै जाँदा त्यही क्रमले अक्सिन पनि सर्दै जान्छ र सूर्यमुखी फूल सधैँ सूर्यतिर फर्किरहेको छ।
7: अब तपाईँहरू माझ राधेश्वर एउटा गीतलाई प्रताप दास र अन्नु चौधरीको युगल स्वरमा, गीतकारमा हुनुहुन्छ विष्णु भण्डारी अनि संगीतकारमा सरोज पोखरेल, यो गीत स्वीकारौं। गीतपछि हामी अन्य विषय सामग्रीका साथ आउनेछौ। रेडियो नेपाल सुन्दै गर्नुहोला।

राम भक्त पशुपति गोविंद राधे, पशुपति भक्त राम व्यास बता दे। राधा गोविंद गीत। भगवान श्री राम एवं भगवान शंकर जी लीला क्षेत्र में परस्पर एक अर्का को भक्ति गर्छन्। यद्यपि राम शिव श्री कृष्ण एक ही तत्व हुन, तथापि श्री राम का पक्का भक्त भोलेनाथ ने हुन। भोलेनाथ हरदम उन्हें श्री राम को ध्यान में निमग्न रहन्छन्। आशुतोष भगवान भोलेनाथ को चरणारविंद में प्रेम पुष्प अर्पित करते कार्यक्रम अध्यात्म संदेश में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत एवं राधे राधे। श्यामा श्यामधाम टीम द्वारा संचालित यो कार्यक्रम यहाँहरुले हरेक दिन ठीक 5:25 बजे रेडियो नेपालबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा करिब आधा घण्टाको अवधिभर यहाँहरुले जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजद्वारा वितरित सत्सङ्गको लाभ प्राप्त गरी आफ्नो बिहानी सफल पार्नुका साथै दैनिक सत्सङ्ग श्रवण गर्दै मानव देह नै सफल पार्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय श्रोताहरू, आउनुहोस् सत्सङ्ग प्रारम्भ गरिहालौँ मङ्गलकारी भगवन् नाम सङ्कीर्तनबाट।